सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाऊं लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक पैतलिया।

हर हर चरण दे और धारे, हर हर चरण दे और धारे, शिव स्वामी सतगुर अपना काज सब हमारे, पुंदान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत विचारे।

श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चित्तावै श्री वाहेगुरु जी रे तेरा नाम चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुगाटल धर्म का जयकार सरबत गुरुद्वारा।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन दी दशा दा बयान कर रहे हन। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

भई किंकनी सबद जनत काल खेल पाए जीव। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके इस बम जान धान धरत ही चाहे सच साच सिर लिया।

करुणालय है, अर्थालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु, ये संसार पाप हरणे करना में सब दुख हरो।

कैसे फिटे, गुरु बाबे फिट कैसे फिटे, गुर अंगद कीते कुआरे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हठ के ना विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, जिन निंदक दुष्ट सब तारिया जहां, निंदक दुष्ट सब तारे तारिया जहां, लहया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनू धन कहया, जिन्नी तुदनू धन कहया, दिन जमने राग कानड़े की वार, श्लोक महला।

हमारी जेबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कहिए तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कहिए जेबा एक तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम हम अज्ञान अल्प मत थोरी मत थोरी तू समरथ वड़ा

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम वद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाहा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा।

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलदे ने, धनासरी ते भीम पलासी। इको ही सुरा ने इन्हां दियां, सिर्फ केड़ी सुर ते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुर ते इहदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी, अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदश है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

अधिराता समय अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके, राणी वाला पलंग खाली पे है।